0: ऐकूपेनो आता ऐकूया हिंदीतल्यान तसेच इंग्लिशीतल्यान खबरो.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की. जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया. सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे. नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं. नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा

0: सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी और लॉन्ग एंड यूनिकली ओपन बॉर्डर।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the North.

0: कलात्म गोय वळेरी घेऊन येता डॉक्टर साईश देशपांडे.
1: कलात्म गोय
2: ऐकूंक रावात ही वळेरी दर सोमारा सकाळच्या सभेंत 7:45 जाल्यार दर बेरेस्तारा सांजेच्या सभेंत 8:15 आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान
1: कलात्म गोय.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम. गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है. गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया. श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की. जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया. सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे. नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है. एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है. एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की. बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी. बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं.
4: Collaborate closely to maintain security.
5: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा. दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं. पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है. दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है.
4: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम.
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है. साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे. उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा. भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए. न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली. दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है. आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है. इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है. इसके साथ

0: जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल

0: हरेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर

0: रह गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज डेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोज डेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर
0: लिया। नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

0: कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पालाकाड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में
0: नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पालाकाड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में

0: ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर।

0: सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिकों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है।
1: समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal.

0: ऐकूप्यानो, तुम्ही ऐकतात चित्रसंगीत ही कार्यावळ. मुखार ह्याच कार्यावळीत ऐकूया आतिफ असलम आणि श्रेया घोषाल यांचा जोड आवाज.
1: देखो आज रात में तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है?
2: एक ही शर्त पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी. बोलो मंजूर है?
1: बोलो शर्त क्या है.
2: चमकते हुए घोड़े पे बैठ कर आओगे, फूलों से सजी गाड़ी में दुल्हन बनाकर मुझे ले जाओगे.

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: Hey guys!
6: Hey, congratulations!
5: आज तो पार्टी चाहिए।
6: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

या जन्मावर चंचलवारा या जलधारा बिजली।

Don't you go bowling.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित

0: सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालेंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से मात दी। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबेली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय हिस्सों, केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आज लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ऐकू तुम्ही ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हणजे 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादय चॅनल। आता तुमकां ऐकुपाक दिता कातरांची कार्यावळ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया।

0: श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालिंस्का को सीधे सेट्स में 6-3, 6-2 से हराया। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 102 ओवर में 5 विकेट पर 456 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दोनशे 33 हूश 1 मीटर म्हणल्यार 1287 किलो हर्जांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेळान वाजा महादेव चॅनल बरोबर 11:05 जाल्ली आसात। आयकून दिता कार्यावळ गाता रही मेरा दिल।

0: ऐकप्यानो बरोबर एक वराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खोबरो आमी संक्षेपीत करता.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है. उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है.
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं. हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं. मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे.
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं. घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है. दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी. तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है. पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे. ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रूपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है. कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा. बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है. एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है. अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है. अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है. सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं. ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी. आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है. इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है. पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं. और इसके साथ ही ये समाचार

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
3: हाँ
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आज तो पार्टी चाहिए,
7: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
8: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
6: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
8: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है, अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
6: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन

0: में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु

0: वट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: तुमचे 33.1 मीटर म्हणल्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रालयान वासा मादय चॅनल बरोबर 2:30 आणि 15 सेकंद जाल्ली आसात। ऐकून दिता कार्यावळ हिंदी फिल्मी म्युझिक। कार्यावळीचे सुरवेक ऐकूया लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांच्या जोड आवाजांत शान या फिल्मातले गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सहअध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और यह मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्व

0: महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 942 रूपये हो जाएगी। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला है। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्ची में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया था। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और कई अन्य भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 15वें ओवर में 2 विकेट खोए और 49 रन बनाए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग इज अंडरवे इन न्यू दिल्ली। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर एंड हिज इंडोनेशियन काउंटरपार्ट सुगियोनो आर को चेयरिंग द मीटिंग। In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year.
3: Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years, we made good progress.

भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉ. जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रूपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रूपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम

0: मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले चार दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दोनशे 33° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोवॉल्टावेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान आमी उलयतात। 6 वरां 5 मिनटां आनी 14 सेकंद जाल्ले आसात। आता ऐकुया आयज विद्रावच्या कार्यावळीची रुपरेषा। इश्णव 6 वरां 15 मिनटांचेर शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ आयकूंक रावात। 6 वरां 35 मिनटांचेर कातरांची कार्यावळ आयकूंक मेळटली। 7 वरांचेर ऐकुया नाट्यगितांची कार्यावळ। सावडेर कार्यावळीत कोटेश्वर घुमट आरती मंडळ दिवचल हांची घुमट आरतीची कार्यावळ आयकूंक रावात आयज सांजे 7 वरां 30 मिनटांचेर।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: दी, ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
6: RBI कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

का आनंद के अमृत दे तेरा मन तुम कितन वीर से जकड़े हुए कैदी जल थल।

0: पंकज उदास, सॉरी पंकज मलिक हांच्या आवाजांतल्यान ही गजल आशिल्ली टू डर ना जाय.
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो.
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन.
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर. बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल. वो कहाँ है मिठाई?
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
6: खो गया इंतजाम.
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का.
7: दिखा. 20,000 का लोन तुरंत. पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर. हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए.
8: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव.
0: आता ऐकूया कुमार सानू यांच्या आवाजातल्यान फुडली गजल.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओवर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित

0: देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित

0: the positive development of the relationship.
1: I think mutual understanding, mutual cooperation, goodwill and good intent. That's what's going to carry this relationship forward. Ms. Veena Sikri, thank you so much for joining us on the program today.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on strengthening India-Nepal bilateral ties. The participants were Veena Sikri, former ambassador, and Gaurang Dhawan Lal, anchor. This program was
3: प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी जहां खबर मिली और खेल खिला. आलेख आनंद श्रीवास्तव का है. प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा. आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी जहां खबर मिली और खेल खिला.

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के

0: Life and freedom.
1: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
2: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या न करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
3: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
4: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन।
3: टंडन, आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
4: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे।

एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपने स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन

0: कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपने स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन
1: कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
2: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट

0: वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
1: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपनी साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
2: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
1: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
2: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
3: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन, यहाँ पर 6 सदस्य टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
4: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हम दर्द की भी रही है।
0: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे। तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
5: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए, वहां इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे। और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी। मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे, और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीक चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आयल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पे तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
0: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।

ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60 70 और 80 का दशक ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
3: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे वो चौकर ने वहां पे पहुंच गया। अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूब सुरजीत अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में। और ये खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और ये समाचार मैं मेलविन डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
4: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना। लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया, पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका

0: ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है, और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने, और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी, और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूं, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती है।
5: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में

0: बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहां जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुंचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
1: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
2: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया।
1: भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
2: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
1: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke pariveesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

0: कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनल बद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री MSN मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री MSN मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, गटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री MSN मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगन अर्ली। His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri MSN Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N.C.H. Krishnamacharilu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri MSN Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri MSN Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri MSN Murthy has performed extensively in the country and abroad, in various prestigious centers of art and culture, and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri MSN Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: Vidwan Sri MSN Murthy aaj ke karyakram ka aarambh kar rahe hain. अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री MSN मूर्ति बिगिन्स दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाणा रागम खंड चापू तालम।

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनि राजमार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Rajamargamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था तन्यावर्तनम जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा